जोजोला पाथाउ नेपाल सम्बचिन्छ सब पिखु द गुन्ला थो नवमी थो रेडियो नेपाल ख आ नेना दिशा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार प्रतिनिधि सभा समिग छक्लन्तु पेमा विभागीय मन्त्रालय नापा स्वाफुदुगु विशेष विभागीय मन्त्री व संसद पिन्दथी निसलिस जुगुदु सभासम परराष्ट्र ऊर्जा कृषि तथा पर्यटन मन्त्रालय नापा स्वाफुदुगु विशेष निसलिस जुगु ख मन्त्रालय गत निसलिसले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल विदेश चुनाव चौपे नेपाली दूतावास थिएको भवन देखेको नीति सरकार मागु कानुन भिङ्का चुनागु धया दिलस विदेशी दुगु नियोग या भवन झोलिक देखेगु ज्या जुया चोङ्गु सरकार धागु दु अध्ययना मन्त्रालय गतनीय यसया झोले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ मता उत्पादन नापा आया गोहाठ्या प्रसारण व पूर्वाधार विकास या ज्या नापा जुया चोङ्गु धया दिल अध्ययन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल युरोपियन युनियन नेपाली वायुसेवा कम्पनी तेता छ गु सुरक्षा सूची या मापदण्ड पुङ्केत सरकार ज्या धल देका योजना चुनागु धया दिलसा कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी दुरिया भुक्तानी तालिका याता भदौ या लिपाङ्गु वालेतक नि ज्ञानु या सीमा दुने हे कुकुत जुया चोङको जानकारी बिए या दिलसा वैशाख थुके असार तक किसान तेता खुइकु करोड भुक्तानी बियागुन वेक्ल जानकारी बिया दिल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नापा भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ नाप्लाना दिगुदु रक्षा मन्त्री नापा जुया सोनादीमा प्रधानमन्त्री शाह नापा सिंह दरबारे प्रधानमन्त्री ओ मन्त्री परिषद कार्यालय सेनाध्यक्ष सेठ मिग नाप्लाना दिगु प्रधानमन्त्री प्रेस व अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल जानकारी बिया दिगु ख प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देलिया औपचारिक बोने सेनाध्यक्ष सेठ पेनुयङ्कया भर्मन्या झोले मिग आइतबार ठेङ्का सेनाध्यक्ष सेठ यता मिग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली सेनाया मानार्थ महारथी दर्जानी ची ललहना दिगु ख नेपाल भारत दुई सन् 1950 निसे छगु देश मेगु देयामा सेना प्रमुख यता मानार्थ महारथी दर्जानी ची कालबिल जुइगु चलन्दु भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ मिग शिवपुरी दुगु सैनिक कमान्ड व स्टाफ कलेज या भ्रमण या नदिल मित्र राष्ट्र उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारी या भ्रमण निगु दे दिया सैनिक स्वपया त अंश सेला किगु व मतिना ज्याकिगु भलसा नेपाली सेना कागुदु नेपाली कङ्ग्रेस संविधान या उपलब्धि या रक्षा या लोकतन्त्र या त अझ दिसी लाकेत संविधान संशोधन या नीति मजी मगागु कुत व भाला कागु कोचिगुदु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा मिग गोसागुगु पत्रकार मुचिया केन्द्रीय समिति बैठक कोचिगु कोचिना सार्वजनिक यासे प्रवक्ता देवराज चालिसे संविधान आधारभूत मूल्याङ्कन तेगु संरक्षण यासे आ जुयासङ्गु थी थी विषयता भिङ्केगु नीति सर्वोच्च अदालत या अवकाश कापी प्रधान न्यायाधीश अध्यक्षता संविधान संशोधन सूचना आयोग निशोने गु माग या नदिलसा अथ्याना पाट्या झिङ्याक गु महाधिवेशन या नीति सभापति गगन कुमार थापा या अध्यक्षता मूल व्यवस्थापन समिति निशोने गु प्रवक्ता चालिसे जानकारी बिया दिल प्रवक्ता चालिसे झिङ्याक गु केन्द्रीय महाधिवेशन वैगु असो 16-19 तक ये जुई गु थोया न्या कोछिना थात्यन्त यागु जानकारी बिया दिल सुदूरपश्चिम में

जोजोलपा थोख रेडियो नेपाल ले जीवन दबु ज्याजो जना व्याचना ले थन लोक कवि राजभाइ जकमी झयादिगु दो ले वेक नप वेक चोयादिगु पुर्खया पला ख्वा विशेष नियनकनि यागु जुइ लस्कुस दु राजभाइ जकमी जो हजुर निराम भाज मेजपी थौ वेक्ल चोयादिगो पुर्खाया पला ख्वा या पिसेस निन्कनी झ वेक यो बच्चा मसिका बिगु धैगु कथा छिसे चाहिँ थो ज्याजो झ्याका चुनागु ख तर वेक लोक कवि जिरङ्गु हुने वेक यो मसिका उली बि माठे चो छ्यादा छ वेक्ल यहाँ दु योगदान हे काफी दु छम अमर सहित मना चोमे अमर सहित कथा न वेक त नाला क्यामली छ्यादा छ वेक्ल छि पुर्खाया गथिकी ने पेम मुनुटेगु वेक्ल चाहिँ चौ पुर्खाया पला ख्वाँ रखा वेक्ल चाहिँ असार बिस गते वेक्ल चाहिँ विमोचन इनातिल प्रज्ञा भवने दासी निरा ब्याजमे थ्वे निन्कनी यागु ह दक्ले नापा वेक्ल चोयान दिगु वेक्ल हानान दिगु मेचपु निनी लेबोर्धङ्का छि निन्कनी यागु जुई

सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रिराङनी दा ढेनमुला गैन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभाला सांसदका दे से घ्युला घ्ला घ्लारी भाल ढुइसे लामा ग्रेन छेती ताबा मुला सुङबान जोखिम ताबा नाम्सा कादेरी चिबा मिनिला सुरक्षा लाबारी सरकारला ध्यान छेङना लासिउबा मुला सभाला तिनीला चिसाङ्री सांसदका दे से जाजर कोटरी निबा ढुइसे ग्यार्जा ब्रे बिमा लाना मिनी कादे प्रभावित तासी समस्या नाबन खाबा मुला सुङबान थेनी कादेला उद्धार लाबान राहत पिनबारी सुङबा मुला सांसद कादेसे विपत्री मुबा होल्डिङ सेन्टर रिचिबा मिनी कादेदा चाबा से थुङबा क्युला व्यवस्था लाबारी सरकारला ध्यान छेङना लासिबान पाल्डी चिबा कोला आमा ताबा जामेकोला जिउनी ताबा जामेकोला तेन जाजा कोलाला सुरक्षा लाबारी सरकार दा सुङबा मुला चिसाङरी सांसद कार्यसे काब्रेरी मेन्दो गिक प्रहरी थिएन जामेकोलाला गोप्य भिडियो किन्सी सार्वजनिक लाभा घटनारी आपत्ति मानबन मिनिला गोप्य भिडियो किन्सी सार्वजनिक लाभा ज्याबा आतानी बेसी सुङबा मुबा राष्ट्रिय सभासे आन्तरिक वायु सेवाला दायित्व सम्बन्धी विधेयक 2083 दा काठी लाबारी विधायन व्यवस्थापन समितिरी पुइदोजी विवाह प्रस्ताव स्वीकृत लाबा मुला राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङ्री रिमठिम पर्यटन थे नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्ग राज पौडेल से थान्छुबा होजा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत लाबा हिन्ला चुङाछा चिसाङ्री रोङसा ब्लोन खाङ थेन सम्बन्धित ब्रिसिन खाबा प्रश्न कदेला जफा पिन्छुबान ब्लोन शिशिर खनालसे ठिम न्याय थेन संसदीय मामिला ब्लोन खाङ थेन खाबा प्रश्न कादेला जवाब ब्लोन सोभिता गौतमसे थेन रिमठिम पर्यटन थेन नागरिक उड्डयन ब्लोन खाङ थेन थुइबा ताम्ला जवाब ब्लोन खड्क राज पौडेलसे पिन्छुबा मुबा चुङाछा राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङ्री सांसद कादेसे समसामयिक ताम्री सरकारला ध्यान छेङना लासिउबा मुबा चिसाङ्री सांसद कादेसे सार्वजनिक थेन गुठीला सा भू माफिया कादेसे किनबा ताम्री प्रतिवेदन सार्वजनिक लसाइनोन कारबाही आलाबा ताम्री आपत्ति मानबन सार्वजनिक सम्पत्तिला सा कादे योनान याइसी भाषी संरक्षण लातोला बिसी सुङबा मुबा सांसद कादेसे होल्डिङ सेन्टर रि मेन्दो चुइगिक सुकुम्बासी सिबा घटनारी दुङाल मानबन पीडित थेत्मादा राहत थेन क्षतिपूर्ति पिनबान होल्डिङ सेन्टरला सुकुम्बासी कादेदा चिबा ग्ला ढिक्नालासी पिन्दोला सुङबा मुबा सांसद कादेसे लोलो लोलो जोङरी निबा भाल ढुई पीडित मिनी कादेदा योनान उद्धार लासी राहत पिनबारी सरकारला ध्यान छेङना लासिउबा मुला राष्ट्रिय सभाला चिसाङ दोषी रेङेन घिक न्यासी चुइङा मिनेट्री चिबा गेखोर मुला स्यार थेन क्लाङ ब्लोन सस्मित पोखरेलसे सरकारी लोपखाङला गुणस्तर लेन लाबारी नीतिगत थेन व्यवहारिक बङ लाबा विषय सुङबा मुला याम्बु नाङला तिलाई सरकारी लोपखाङका दे च्यास्युबा लिचा सरकारी लोपखाङला सुधार्दा प्राथमिकता रि थान्सी गे लाबा विषय सुङबा मुला सरकारला सुङबोन्डोन मुबा ब्लोन पोखरेलसे हेडमास्टर मास्टर

गे थुम्री मुबा सुन कोशी मरिन डाइभर्सनल भेरी बबही बहुउद्देश्य सिक्का सिँचाई रानी जमरा गुलरिया सिँचाई महाकाली सिँचाई थिएन बभई सिँचाई आयोजना धरेम गादिङ नाङ्री थुम्ना लाबालासी योजना छ्याम ऊर्जा ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठला गोबाङ्री तिलमा काठुई ताबामुबा सरकार चे बिजुलीला टाङ्गा च्याङ्ना सोबारी माइबन मुला ऊर्जा किनेर थिएन सिँचाई ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से श्रेष्ठला प्रस्तावरी साउन चुई सोमरी विद्युतला टाङ्गा पुनरावलोकन लाबारी समिति सोबा मुबा नेपाल विद्युत प्राधिकरण से उपभोक्ता थिएन छोङबोन कादेदा सहुलियत्री बिजुली पिन्बा गे तिबारी माइबन मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङ गेजाङ गाम्ला ह्युलबाङ सतर्कता केन्द्र से लिछा ला ला भ्लिरी तोङ चुई गिक सरकारी कर्मचारी दा कारबाही लाबामुला काइब्लोन बालेन्द्र शाह गोबाङला सरकार शोभा लिछा सरकारी गेजाङ कादेरी अनुशासित शोभा थिएन मिनिला गुनासो सुनवाईला गे लाबान खाबा मुला बिसी रो लोन थिएन सुङबोन नारायण प्रसाद भट्ट से सुङबा मुला केन्द्र से रिकपारी आचिबा मोकोन कर्मचारी कादेदा टिम अनुसार कारबाही लाबारी सम्बन्धित निकाय कादेदा पाङबा मुला तिनी ह्युलबाङ सूचना दिन्छन् 2083 धाङबालमुना सूचनाला पो सम्बन्धी ठिम 2064 जारी राधा डानबान चु दिन्छन् धाङबा लाबामुला तिनी लोलोलोलो गेन्दुन्से गेखोर सेङसी ह्युलबाङ सूचना दिन्छन् 2083 धाङबानमुला बिसी राष्ट्रिय सूचना आयोग से पाङबामुला विक्रम सम्ब 2064 साउन घाला कुनु सूचनाला पो सम्बन्धी ठिम संसद ग्याम पारित ताबामुबा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा से संसदीय दल्ला थिम 2083 तोजी भिसाम संशोधन लाबारी गेदल शोभा ताबामुला तिनी चिबा पार्टीला संसदीय दल्ला चिसाङ्री चोहो रवि लामिछाने ग्रेन गोबन कादे ब्लोन कादे सांसद कादे घुङ्री संसद थेन सरकारला घेदा खारङ लासी ज्याबा सोबारी खामला बिबा ताम्री काठुई ताबामुबा चिसाङ्री ग्रेन सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीला थुतबोन्डी शोभा गेदलसे निश्रा नाङ्री विधान संशोधनला प्रस्ताव थिएन तोबा गे विधि शोभा ताम्री काठुई ताबामुला बिसी संसदीय दलला रो गोबन गणेश पराजुली से सुङबामुला चुराङ लासिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाला मियो समितिला चिसाङ रेङेन चिबा गेखोरमुला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका ओडा नम्बर सोमला ओडा घेजाङ दिमखाङ डुइसे नाङबामुला तिलैरा हेन्से नाम ताइबारी आख्लाबा लिछा ताइबा डुइसे ओडा घेजाङ दिमखाङरी चिबान आताना लासी क्षति ताबामुला ओडा चोहो लाक्पा गेलु शेर्पासे सुङबा अनुसार ओडा घेजाङ छ्याम मुबा प्रहरी चौकी रिनोन जोखिम राङबा लिछा सुरक्षित घ्लारी लेबा मुला बिसी सुङबामुला चुराङ लासिन बैतडीला सुर्निया गाउँपालिका ब्रे राता पानी टोल्डी डुइसे लामा नामसान जोखिमरी परदिबा मुला डुइसे लामा डु दिम थेमे विस्थापित ताबा मुला बिसाम स्यान्दो दिम कादेनोन जोखिमरी मुला नेपाल मेडिकल काउन्सिलला चोहो दाण्डी प्राध्यापक ढुण्डी राज पौडेल नियुक्ति ताशिबा मुला छार नियुक्ति चोहो प्राध्यापक डाक्टर पौडेल से तिनी लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन निसा मेहता होन्छाङ दान्थेन गोपनीताला ग्रान किन्स्युबा हिला डाक्टर पौडेल दाते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर री ना नाभेङ थेन खारे विभागला ग्रेन पोतासी गे लास्युबा मुबा हेटोडा चुइकु बस्तीपुरी मुबा वासुदेव खोल स्योङसे ब्योङना लासी भाबा मेन्दोनी जाजा कोला कादेरी दोषी मेन्दो गिक्ला सिबा लुइरो स्याप्पा मुला निर्मल माभि ग्याम डोसी दिमरी याइवन लाबा धुइरी तिलमा धिनिरी मेन्दो ब्ली जाजा कोला कादेदा होजा स्योङसे ब्योङना लाबा मुबा थेनी कादेरी मेन्दो गिक्ला उद्धार लाबा मुबा विसाम मेन्दो गिक तिलमान सिबा धुइरी स्याप्पा मुबा माबा मेन्दो निला तिनी ग्याम्नोन माइबा धुइरी विनिता ब्लोन स्योङला स्योङरी शिवा धुइरी स्याप्पा मुबा बिसी जोङ प्रहरी गेजाङला सुङबोन माधव प्रसाद काफले से सुङबा मुला कछ्याङहारी डोबा सुमित्रा ब्लोन स्याप्पा आरे थेदा माइबा गे लाबन मुला स्योङसे ब्योङना लाबा मेन्दोब्ली लोबोन कादेरी तिलमा राक्सी राङ घिक्ला रेस्मा स्याङदान शिवा धुइरी स्याप्पा मुबा बिसाम सीमा ब्लोन्दा घाइते धुइरी

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। प्रतिनिधि सभाके सांसद सब देश के विभिन्न भाग में बाढ़ भूस्खलन के कारण अधिक मात्रा में जनधन के क्षति भेल कहत जोखिमयुक्त बस्ती में रहल नागरिक के सुरक्षा के लेल सरकार के ध्यान आकर्षण कर लेने छ। सभा के आजुक बैठक में सांसद सब किछ दिन पहिने ही जाजरकोट में आयल भूस्खलन से 800 से अधिक प्रभावित सब रहल अछि आ समस्या में रहल सरकार के अई के सरकार व्यवस्था केने कहत हुनका सबके उद्धार आ राहत के व्यवस्था करबाक लेल मांग कलनि। सांसद में विपदा पड़लाक बाद होल्डिंग सेंटर में रहल नागरिक के खाए के पानी के व्यवस्था करबाक लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करबैत पाल में रहल लड़कोरी गर्भवती आ धियापुता के सुरक्षा में ध्यान देबाक लेल मांग कलनि। सांसद सब बारा जिला के जीतपुर सिमरा में 3 वर्षक बालिका गरिमा चौधरी हराल 3 दिन में मृत भेटल विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करबैत दोषी पर कार्रवाई के मांग कलनि। ओ सब बारा में 3 वर्षीय बालिका के हत्या होवा में प्रहरी के गंभीर लापरवाही मुख्य जिम्मेवार रहल बतबैत इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के अकर्मण्यता के कारण एकटा निर्दोष बालिका के मृत्यु भेल दावी कलनि। सांसद साहब हेठौड़ा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 में मंगल दिन खहरे नदी पार करबा क्रम में 4 गोटे बालिका दहेला से 2 गोटा के मृत्यु भेल 1 गोटे बेपत्ता रहल 1 गोटे के उपचार भ रहल विषय में जानकारी करबैत नदी पार कर लेल पुल लगायत के पूर्वाधार के व्यवस्था कर नागरिक के यात्रा के सुरक्षित बनेबा लेल मांग कलनि। सांसद सब काबरे में एक प्रहरी आ युवती के गोप्य वीडियो खींच कर सार्वजनिक कैल गेल घटना प्रति आपत्ति जनाबैत व्यक्ति के गोप्य वीडियो खींच कर सार्वजनिक करब गोपनीयता के हक विपरीत आ कानून रूप में दंडनीय अपराध भेल बतौलनि। सांसद सब कर्णाली में निर्माण भ रहल भेरी लिफ्ट खाने पानी आयोजना के निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं रहल तथा 2 वर्ष में 35% मात्र प्रगति रहल कहत निर्माण कार्य में भ रहल समस्या के विषय में समाधान ताक लेल मांग कलनि। सांसद सब संविधान में 3 तरह के सरकार के एकल असजिया अधिकार के विषय में विचार विमर्श कर अखन के कानूनी जटिलता हटाबा के आवश्यकता रहल बतौलनि। सांसद सब कुशियार किसान सरकार देवला भुगतानी भेटल कुशियार मिल देवला भुगतानी समय में नहीं देने कारण किसान सब मार में पड़ल कहे तत्काल भुगतानी देवला व्यवस्था करबाक लेल सरकार संग मांग कलनि। राष्ट्रसभा आंतरिक वायु सेवा के दायित्व संबंधी विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लिए विधान व्यवस्थापन समिति में पटाल जाकर का प्रस्ताव स्वीकृत कलक अछि। राष्ट्रसभा आजुक बैठक में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पोडिल प्रस्तुत कने एहि प्रस्ताव के सर्वसम्मति से स्वीकृत कलक अछि। ऐसे पहिने बैठक में परराष्ट्र मंत्रालय संग संबंधित लिखित प्रश्न के उत्तर मंत्री शिशिर खनाल कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय संग संबंधित लिखित प्रश्न सब के उत्तर मंत्री शोभिता गौतम आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय संग संबंधित लिखित प्रश्न सब के उत्तर मंत्री खड़गराज पोडिल टेबुल भेल छल। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक 5 भादो दिन के 1:15 में बैसत। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संग मंत्री सब चालू आर्थिक वर्ष में करवला मुख्य काज आ उपलब्धि के लिए कार्य संपादन समझौता कलने सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में मंत्री सब आय प्रधानमंत्री संग कार्य संपादन समझौता में हस्ताक्षर आ समझौता के प्रति आदान प्रदान कलने ओ सब सुशासन सामाजिक न्याय आ समृद्धि संग संबंधित कार्य संपादन समझौता कने प्रधानमंत्री के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल के जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री सह अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ गृहमंत्री सुदन गुरुंग कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मंत्री महावीर पुन संग कार्य संपादन समझौता कलने संगे महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीतावादी भूमि व्यवस्था शहरी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरिल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पोडिल सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी आ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी सिंह प्रधानमंत्री संग कार्य संपादन समझौता केने प्रधानमंत्री के कार्यालय जनौलक अछि। आय प्रधानमंत्री शाह संग नेपाल सरकार के मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की सिंह कार्य संपादन समझौता कलने अछि।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय माथहातको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र बितल 4 महिनामा 11,000 सरकारी कर्मचारीको कार्यवाही कलक छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भेल बाद सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम करबाक तथा जन शिकायत सुनवाईको प्रक्रिया तीव्र गतिमा आगू बढाएल गेल। केन्द्र सचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्ट अघि जानकारी दिलन्। हुनक हिसाबे गत चैतसँग साउन धरि केन्द्रमा सरकारी कार्यालय वा कर्मचारी सङ्घ जुडल गेल उजुरी दर्ता प्रक्रिया उल्लेख्य वृद्धि भेल छ। प्रवक्ता भट्टके हिसाबे गत चैतसँग साउन धरि केन्द्रमा 1,298 उजुरी दर्ता भेल छल, जाहिमध्ये 1,114 अर्थात 85% उजुरी फरछोट कयल गेल अछि, जे अगिला वर्षके वएह अवधिके तुलनामे 11.72% बिन्दुसँ अधिक अछि। केन्द्रके हिसाबे विक्रम सम्वत 2081 चैतसँ 2082 साउन धरि 556 उजुरी दर्ता भेलमे 412 अर्थात 74.10% उजुरी फरछोट भेल छल। वर्तमान सरकार गठन भेलाक बाद जारी कयने शासकीय सुधारके 100 सूचीमे कर्मचारीके आचार संहिताके अक्षरशः कार्यान्वयन करबाक उल्लेख छल। वएह हिसाबे केन्द्र कार्यालय अनुगमन आ कार्यवाही प्रक्रिया कड़ा आ व्यापक बनाएल गेल जनौलक अछि। केन्द्र के अन हिसाबे गत चैतसँ साउन धरि 924 कार्यालय के अनुगमन कयल गेल अछि। अनुगमन के क्रम में आचार संहिता आ समय पालन नहीं कयने 10,268 गोटे, तोकल गेल पोशाक में उपस्थित नहीं भेल 645 गोटे तथा अपन कार्यकक्ष में नहीं भेटल 91 गोटे क 11,004 गोटे कर्मचारी कार्रवाई में पड़ल। केन्द्र अनुशासन उल्लंघन करवला सब कर्मचारी के प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक लेल संबंधित निकाय के कड़ा निर्देशन देने। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछा ने नेपाली जनता देने अधिक जिम्मेवारी के पूरा करबाक लेल पार्टी आ सरकार थप जिम्मेवारी सहित काज करब जरूरी रहल बतौलने। पार्टी सभापति लामिछा ने सरकारक मंत्री सब तथा पार्टी के सांसद सब संग आई संसद सचिवालय में कने बैठक पश्चात आयोजना कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में ई बात बतौलने। वो सरकार आ पार्टी के बीच में थप सुमधुर संबंध कायम करत, जनता के इच्छा आकांक्षा पूरा करत, देश के समृद्धि के बाट में कोना का देश के लौ जाल जा सकत विषय में बैठक में विचार विमर्श भेल बतौलन। राज्यसभा सभापति लामिछा ने प्रधानमंत्री तथा पार्टी के बीच में कोनो प्रकार के मतभेद नहीं भेल बतबैत सरकार तथा पार्टी के लाइन विपरीत के काज कोनो पक्ष से नहीं होय उद्देश्य के संग बैठक कायल गेल बतबैत ई बैठक संसदीय दल के बैठक नहीं भेल स्पष्ट कलन। वो पार्टी सभापति लामिछा ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच में दू धार भेल विषय में कोनो सत्यता नहीं भेल बतौलन। वो पत्रकार सब के ने एक प्रश्न के में मंत्री सब के काज पूर्ण रूप में संतोषजनक भेल बतबैत मंत्री सब बदला पड़ित अछि अइ पक्ष में प्रधानमंत्री तथा पार्टी नहीं भेल स्पष्ट कलन। वो छोट समय में मंत्री सब कने कार्य संपादन सामान्य प्रश्न उठब के अस्वाभाविक कहब नहीं मिलत बतबैत अ के सुधार क बढ़ब जरूरी रहल बतौलन। राज्यसभा के अध्यक्ष लामिछा ने बड़का पार्टी तथा बहुतों सांसद सब भेला से कहियो काल संसद में उठब नहीं होवे वाला विषय सब से उठत आल प्रति सजग रहल सांसद सब संग विचार विमर्श कने बतौलन। वो संसद में उठल विषय के समय में कोना का संबोधन कायल जा सकत अ विषय में सरकारक मंत्री सब संग विमर्श भेल बतौलन। पार्टी सभापति लामिछा ने बोलबजने अइ बैठक में सरकारक मंत्री सब सांसद सब के सहभागिता रहल छल। बैठक करीब 3 घंटा धरि चलल छल। बैठक में मंत्री सब संबंधित मंत्रालय के कने काज के विषय में पार्टी सभापति रवि लामिछा ने की जानकारी देने छले थे। सरलाही के चंद्रनगर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 पोखरिया में 6 वर्ष पहिने खोलल गेल कृषि सड़क के विवाद स्थानीय किसान सब इस समस्या में पड़ल। किसान सब के निर्णय क 2077 साल में पोखरिया स्थित बबरगंज पोखरिया सड़क संग जोड़ के पूर्व दिश लगभग 1 किलोमीटर कृषि सड़क खोलल गेल छल। 2 दिन पहले कृषि सड़क के मुहे में रहल जमीन के मालिक राम नरेश शाह बिजली के पोल उखाड़ दिलाक बाद किसान थप प्रभावित भेल। किसान वाड़ा कार्यालय के पहल में गत अखाड़ 21 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मलंगवा वितरण केन्द्र के सिंचाई के लिए सहज हुए उद्देश्य के संग कृषि सड़क क्षेत्र में बिजली के पोल गाड़ा के तथा तार ताना के काज कने छल। चंद्रनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 गढ़ा टोल के शिवचंद्र राय लंबा प्रयास पश्चात कृषि सड़क खोला आ बिजली के पोल गाड़ा सफल भेल बावजूदो सड़क संचालन कर नहीं सकल शिकायत कलन। विवाद

शिशु सेवा में सेवाग्राही के चाप बढ़लाक बाद व्यवस्थापन में चुनौती सृजना भेल अछि। आर्थिक वर्ष 2082-83 में बर्दीवास अस्पताल 45,370 गोटे के विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान कयने जनौलक अछि। अगला आर्थिक वर्ष 2081-82 में संख्या लगभग 39,400 छल। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितेश घिमरे के हिसाबे सेवा सुविधा के विस्तार संगे महोतरी लगात पड़ोसी जिला से सेहो रोगी आवाक क्रम बढ़ल अछि, जैसे जनशक्ति व्यवस्थापन, शौचालय विस्तार, प्रयोगशाला के क्षमता वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा तथा निःशुल्क दवाई के मौजदात व्यवस्थापन के थप चुनौतीपूर्ण बनौने अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चालू आर्थिक वर्ष में किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ मंत्रियों का कार्य संपादन समझौता। नेपाली जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पार्टी और सरकार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने किया स्पष्ट। बाल विकास सहजकर्ताओं और विद्यालय कर्मचारियों के पारिश्रमिक अनुदान में वृद्धि करने का सरकार का निर्णय। कर्नाली प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाही और सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट को विश्वास का मत प्राप्त। और ईरान के साथ तत्काल वार्ता करने की कोई योजना नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ मंत्रियों ने चालू आर्थिक वर्ष में किए जाने वाले मुख्य कार्यों और उपलब्धियों के लिए कार्य संपादन समझौता किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों ने कार्य संपादन समझौते पर हस्ताक्षर किए और समझौते की प्रतियों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री के प्रेस एवं अनुसंधान विशेषज्ञ दीपा दाहाल ने जानकारी दी कि मंत्रियों ने सुशासन, सामाजिक न्याय और समृद्धि से संबंधित कार्य संपादन समझौता किया है। समझौते के आधार पर प्रधानमंत्री को मंत्रियों के काम और कार्य संपादन का मूल्यांकन एवं अनुगमन करने, उन्हें जवाबदेह बनाने तथा सरकार द्वारा घोषित नीति कार्यक्रम और बजट में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। इसी आधार पर अब मंत्री सचिवों के साथ भी कार्य संपादन समझौता करेंगे। आज ही प्रधानमंत्री शाह के साथ मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कारकी ने भी कार्य संपादन समझौता किया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने संसदीय दल के विधान 2083 में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। पार्टी संसदीय दल की आज हुई बैठक में मुख्य सचेतक कविंद्र बुरला कोटी के संयोजकत्व में कार्यदल का गठन किया है। संसदीय दल के उपनेता गणेश पराजुली ने बताया कि कार्यदल 7 दिनों के भीतर विधान संशोधन का प्रस्ताव तथा आवश्यक कार्यविधि तैयार करेगा। पार्टी सभापति रवि लामिछाने शीर्ष नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के बीच संसद तथा सरकार के कामकाज को प्रभावी बनाने के विषय में भी चर्चा हुई। बैठक में सांसदों ने जनता की शिकायतों और मंत्रालयों से संबंधित विषय उठाए, जबकि मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय के कार्यों के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद पार्टी सभापति लामिछाने ने कहा कि नेपाली जनता द्वारा दी गई बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पार्टी और सरकार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी के बीच और अधिक मधुर संबंध कायम करते हुए देश को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए मंत्रियों और सांसदों के बीच चर्चा हुई। रासपा के सभापति लामिछाने ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री और पार्टी के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की चर्चा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि पार्टी के सांसदों और मंत्रियों की ओर से सरकार तथा पार्टी की विचारधारा, नीति और कार्यक्रम के विपरीत कोई काम न हो। उन्होंने मंत्रियों के कामकाज को पूरी तरह संतोषजनक बताते हुए स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री और पार्टी मंत्रियों को बदलने के पक्ष में नहीं है। रासपा के सभापति लामिछाने ने कहा कि पार्टी बड़ी है और के सांसदों की संख्या भी अधिक है, इसलिए कभी कभी संसद में ऐसे विषय भी उठ जाते हैं जिन्हें नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भी सांसदों के साथ चर्चा कर उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सरकार ने प्रारंभिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी और विद्यालय सहयोगी का पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने विद्यालय कर्मचारी, सहयोगी और बाल विकास सहजकर्ताओं को संघीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पारिश्रमिक में प्रति माह 5,000 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय किया है। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने जानकारी दी कि बैठक ने आधारभूत और माध्यमिक तह में शिक्षण सहयोग अनुदान कोटे के तहत कार्यरत शिक्षकों का वेतन क्रमशः निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी और माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के बराबर करने का निर्णय भी किया गया है। मंत्री पोखरेल ने बताया कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुधार संबंधी परियोजना के लिए जापान सरकार से प्राप्त होने वाली करीब 2.73 अरब रुपए की अनुदान सहायता स्वीकार करने का भी निर्णय किया गया है। इसी तरह बैठक ने भुगतान और फटछोट आयन 2075 और नागरिक निवेश कोष आयन 2047 में संशोधन करने के लिए तैयार विधेयकों को संघीय संसद में पेश करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद ने सॉफ्टवेयर विकास तथा संचालन समिति गठन आदेश 2083 को मंजूरी देने तथा नेपाल सरकार और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता करने की स्वीकृति देने का भी निर्णय किया है। इसी तरह मंत्रिपरिषद बैठक ने कई अन्य निर्णय भी किए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने बाल श्रम निषेध तथा नियमित करने विधेयक 2083 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने प्रस्ताव पेश किया था। मंत्री यादव ने कहा कि सांसदों के महत्वपूर्ण सुझावों को विधेयक में शामिल किया जाएगा और बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सांसदों ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के उद्धार और राहत की व्यवस्था करने तथा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने जाजरकोट में हालिया भूस्खलन से प्रभावित 800 से अधिक लोगों को तत्काल राहत देने की मांग की। सांसदों ने गन्ना किसानों को समय पर मीलों से भुगतान दिलाने की भी मांग की। इसी बीच नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता राम बहादुर थापा बादल ने रासोपा सभापति रवि लामिछाने को प्रधानमंत्री सहित सरकार के पुनर्गठन का सुझाव दिया। उन्होंने राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के प्रति सतर्क रहने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 8 दोपहर 1 के लिए बुलाई गई है। सरकार ने इस वर्ष करनाली प्रदेश के सभी जिलों में 100% विद्युत सेवा पहुंचाने की तैयारी की है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने बताया कि बिजली से वंचित करनाली के 164 वार्डों में विद्युत विस्तार का काम जारी है। पहले चरण में सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट, जुमला और मोगू में वितरण लाइन विस्तार तथा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए टेंडर हो चुके हैं। दूसरे चरण में ऊपरी डोलपा में 33 और 11 केवी सब स्टेशन तथा वितरण प्रणाली स्थापित कर पूरे करनाली को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य किया गया है। बैठक में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल, कानून मंत्री सुविता गौतम और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़ग राज पौड़ेल ने सांसदों के लिखित सवालों के जवाब दिए। वहीं आंतरिक वायु सेवा दायित्व विधेयक 2083 को दोबारा चर्चा के लिए विधान व्यवस्थापन समिति में भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक भाद्र 5 शुक्रवार दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। करनाली प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाही ने प्रदेश सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज हुई प्रदेश सभा बैठक में विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 21 मत पड़े। प्रस्ताव के विपक्ष में 13 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 2 सांसद तटस्थ रहे और 3 अनुपस्थित रहे। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट ने प्रदेश सभा में विश्वास मत हासिल किया है। आज हुई प्रदेश सभा बैठक में उनके पक्ष में 31 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 15 मत पड़े, 3 सांसद अनुपस्थित रहे। बागमती प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए नेकपा एमाले के प्रदेशसभा सदस्य किरण थापा मगर ने आज प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा के समक्ष दावा पेश किया है। इससे पहले एमाले के बागमती प्रदेश संसदीय दल की बैठक ने थापा मगर को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है और निकट भविष्य में भी वार्ता निर्धारित नहीं है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ट्रंप ने 18 अगस्त को कहा कि ईरान के साथ न तो कोई वार्ता हो रही है और न ही कोई बैठक तय है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बातचीत आगे बढ़ने के संकेत दिए गए थे। ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जेरेड कुशनर ने भी संवाद जारी रहने की बात कही थी, जिससे अमेरिकी प्रशासन के बयानों में विरोधाभास दिखाई दिया। ईरान की ओर से भी अमेरिका के साथ तत्काल औपचारिक बातचीत के संकेत नहीं मिले। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका प्रतिबंध हटाने, ईरान की जमा संपत्तियां जारी करने और नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करने जैसी मांगें पूरी नहीं करता। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चालू आर्थिक वर्ष में किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ मंत्रियों का कार्य संपादन समझौता। नेपाली जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पार्टी और सरकार एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने किया स्पष्ट। बाल विकास सहजकर्ताओं और विद्यालय कर्मचारियों के पारिश्रमिक अनुदान में वृद्धि करने का सरकार का निर्णय। करनाली प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाही और सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट को विश्वास का मत प्राप्त। और ईरान के साथ तत्काल कोई वार्ता करने की कोई योजना नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुलासा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
5: झण्डु आयुर्वेद,
6: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
5: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पाइल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
6: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
5: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
6: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
7: संगीत साधना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रविधि संयोजनमा रहनुहुने देवकी भण्डारीसँगै दुर्गा अधिकारीको सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट प्रस्तुत हुँदै आइरहेको संगीत साधना कार्यक्रम यहाँहरूले मिडमेपका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरूसँगै 98.1 MHz अनि www.radio